0: हंगार
1: अंगार दो मेंदुन कोरी एकार गड़ फणा रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूं आदि बुद्ध दो होगेरे मेंदम बार गड़ तेरी हूं
0: हंगार हमें कनी दिवे राज्य चाडूं।

0: Tech Talks.
1: मे प्रोग्राम के एक्सक्लूसिव स्पॉन्सर फाहिपे।
2: बिल्त दक्कम फसे होते मियोती फाहिपे ऐप बिल तक अंगारा जुमला ददु फाहिपे ऐप ट्रांसफर कोल्ला देंगा महूरिया बिल तक फैसा दक्का निम्मा लम्बी फोन फेंग गैस अधि मीडिया नेट बिलकस देखके ने रीलोड रास्टस नूनी डेटा पेक्वस नेगे नेंगे मी हम डिजिटल वॉलेट देने मस देबा वायरु बिल नु देखी गेंग लारिया वीनु ये नेंगी गेंग उले कर नुझे ने हुरिया डिजिटल पेमेंट का फाहिपे मा फाही
3: टेक के दुनिया अड़गण में दत रुकुगें उलेरु टेक्नोलॉजी या साइंस के दायरा बड़ी कुंफुनी तक गेंडमुन दा बदल तक बलानुला दुकुलमकी खुरमाने वर्ग कमेनु मिहफ्ता हास टेक के एम एफ ओ गे खबर तंग अडोहाल ती एहुन तेरिन तैयार तो कुरियन ओती टेक के खबर ता
4: खबर

0: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস করে আল মুমিনু লিল মুমিনি কাল বুনিয়ান ইয়াশুদ্দু বা'দুহু বা'দা মানে এম মুমিনাকু আনে মুমিনাকান এহি তেরিবে ভাগে উরিবু মুগা বিনা ইফাদে এই এ বিনাগে এব্যাং আনে বায়া বারা গাদাকান দে ফাদান
1: ಮೀ ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗಡು ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗಡು ತಿಂಗಡಿ ತೇವಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಗಮಿ ಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಮೆದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್

0: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস রাওয়াফ হবে, লা তাআতা লি আহাদিন ফি মাসিয়াতিল্লাহ ইন্নামা আত-তাআতু ফিল মারুফ, মানে আল্লাহং উরদেবে এভস কামেগা মিহাকা কিয়ামাম বুমে নুবে হামাকাশওয়ারুম কিয়ামাম বুমবানি হিওকাং কামগে।
1: ಅಡು ಸಂತಿಗಿಂದ ಬನ್ನಿದ್ದೀವಿ ರಾಜೇಗಡು ಹೈಗಡಿ ಹತಾವಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಗಮಿಗಿನಿಸ್ತೀನಿ ಮಿರೇಗೆ ಇಶಾನ ಮಾದು ಒಗುದುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿ ದುವಾ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್

PSM News के बेस्ट फोटोग्राफर अवार्ड मिफहारु हासिल कुरा फरात की जलवान जमीर

0: अरे अवार्ड तो तेरे एम ए शरफ पर अवार्ड तो तेरे इन अवार्ड बेस्ट प्रोग्राम पीएसएम न्यूज से मुफद्दा करंट अफेयर्स प्रोग्राम तो बलादार का कम में दुआ को गिनस्ते करंट अफेयर्स प्रोग्राम तो है कि अब मैं आम दिलूर मुगा हिंगा एक एक हादसा तो मच्छा बिना को गिनस्ते करंट अफेयर्स प्रोग्राम तक एक एक इन्वेस्टिगेशन हुआ था एक एक हादसा तो मच्छा आदर वाला गिनस्ते एक एक प्रोग्राम तक अभी मिनूनस मुनिपुर फिल्म एक एक प्रोग्राम तक अदे बाकी दायरा है हुरिया दायरे को प्रोग्राम तक गिनस्ते मुंदे एम जुमला को धन्यवाद हम न्यूज टीम अन्नुला हम एम दिवसते हुरिया था फैल यह बस पूरी हमें ये तो मैं ऐसा हूँ बेस्ट प्रोग्राम नॉमिनिस
1: पीएसएम न्यूज अवार्ड दे हा सब दिस बेस्ट प्रोग्राम तांडु वेरिंग
2: आला एक हाथ फाटे चिप बस बाशी बस समा कमेंट रखा हाथ दान ये ना बस रोड मां खास को एम गिन बेनुम बावत के खराक में बात खराज एक ही बावत का एक ही वक्तर
1: ITB Berlin ga divi rajya
3: aur puri entire rajya ga resort ka airlent ka adi patar welcome ga daira ga seedha gotunna nu seedha gotun karike tiriwa mandu bu
1: rashu raha
4: very fa hunna talidam begem vetti fa hunna heedu ga modunima meerwane bihar edani muraga fata bam khela chi mat
0: PSM Mufadda program to gotere best program mifaharu midibe program nota program to geno minister me feeling e diai mifaharu kon program e ba avanu hadana gaje midiharu geno program kan hobodi kon program e kan wes kon program e ba hadana ne रंग प्रोग्राम वहाँ के अगर मारू का ना है तो आना गाना नहीं मक्का के बीमों है आ देखो मेरे का समा बेस्ट प्रोग्राम तो क्या नॉमिनेशन फेंक के दिए रुका मिफा हरु के मी अवार्ड उपलब्ध प्रोग्राम प्रोग्राम की

0: अलुन दरनवाणी हम यह उम्मीद नुकर में कम कुए सम ये वोट लिपुणी मदे मरा बड़ा शुक्रिया अदा कर मेनु हम पूरी हार मुडी टीम अपे शासक दे अलुन आयदा देपा सपोर्ट अपे समारा बड़ा शुक्र अदा कर दे हे नमस बी अवार्ड मी हम टीम ओके के बने वेली और बड़ा शुक्रिया
1: मरहबा मतलब अदे मत्सु बा मेरा पाहाक वेगेन दियाई PSM News का मसके कुरुमपहु दुस्कोला को अनकास अड्डू मीडिया सेंटर का मसके कुरी एम्बुरी अनकास मिकोला गैस मिकोलु का मी मसके कुरी कुरु मुद्दा तो गते रे आमने पाहागवी वारा कुरु मुद्दा ते गते रे वारा गिना कांकां इंप्रूव नता कुरियरम होदी जर्नलिस्ट

अदाउ में गेम में इंतजार करा मुंगा वगुत कोड़ा हमें मियाद बुनी मुली आहारु का न्यूज़ रूम कुरी मसाकत के तेरे एक कुरी मसाकत ता आगवाजं कुरे भी आदि कुरी मसाकत ता कुरेनी एक तेरे कुरेने मुंगा इस आहारु के नोटा न्यूज़ रूम के एम में मोड़ मुआजा कु हवमा हमें मियाद बुनी आहारु के एम में मोड़ मुआजा कु के एवोर्ड मिपारु उपदा दानी कुंभे फुलबा Said Shayad Hafiza Alguien que batería de esto Abajito que viendo y viene de esto Aharu que ಅದಾವಣ ಕಸಾದಿನ ನೇಕ ಎಂಗೇತ ಕೊಂ ಬೇಪಡಕ ಮಲ್ಲಿ ಬೇನಿ ಅದಿ ಮೇನ್ ಮುದಿ ಬೇಕೆ ಅತಂ ಕೊಂ ಬೇಪಡಕ ಮಿ ಫಾರ್ ಎವರ್ಡ್ ದಿ ಬೇನಿ ಹತ್ತಾ ಸಾಗಣುಸ್ ಮ್ಯಾರ್ ಹಿಂಗೇ ಬತೇಳೆ ಎಂಗೇತ

0: खबर उकाडे
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मी दिवेहराज जेगाडुगे खबर गडी प्रोग्राम मेरे गे खबर गडी प्रोग्राम गाहि मेने मुहिम खबर तोगे सुरहे तोगे तेरेगा रईसल जमहूरिया या एमन खान गामिक वलन साजदा मोहम्मद श्रीलंका या वडागतमु ए गाउमु एमन खाना हुनु मरहबाय देनेमु दिवेहराज जेगे डेमोक्रेटिक निजाम देमेटुमगा पीएसएम न्यूज सिंह अदा कुरानी मुहिम दवरे कमा रईतुंग मजलीवगे रईस विदालमु मालेगा एंगहर वरे खुरु मुद्दती गारा वे विफा फरा तकविस बोहिया वहिकम गे फुजत लिबिदे गुता फोम बदल गिनिस फावा कम बिनारा गेदरे कम उमरानी थरक गया बे वुजाराई बिदाळवु दिवे हिंगाम को बेनु कुरा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तकुं खाडु महाकुं हिदे ट्रांजेक्शन तन्नु वत मुआमला ता लिमिट कुरम बे मेलुन निमेवु लुबनान गे देखुन सरहद गा हुरी एक लुबनान गे देखुन सरहद गे इतु हुरी इतु रवत क हुस्कुरन यहूदीन अंगम फिशुं अदिवस इतु खबर ता देंग खबर तोगे तफसीलाय को कुरिया दाना रईसल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ा एमनिक फान के अंबिकम्बलुन साजदा मोहम्मद श्रीलंका वडागतमुन ए गाउमुन एमनिक फाना हुनु मरहबाय तन्नवाफी रईसल जमहूरिया गे देकम्बलुन लंका वडागति मियदु हावीरु गे वगुतेगा अदि मी मिमहु गे हायका हामि श्रीलंका गे रईस अनुर कुमार दिसेने कगे दावतका ए गाउम कुरवा फुरमान दतुरफले मिरस्मी दतुर्फुगेतेन रईसल जमहूरिया श्रीलंका के ईश्वरी ना बदल कुरवा देगम गे देमिदु गा गुलुंग इतुर बदई कुरवा मा गुले गुतु मशरा कुरवाने मीगे तेरेगा तावलीमा फन्नी तमरीना इक्तिसादी ए बरलुमा हिंगुम गे दायरा गे तुरुं तारिका दि बैनल अक्वामी मैदान तौगा एक हमसे के कुरवेने आ मगुता होदुम हिमेने रईस जमहूरिया गे देखम लंका कुरवा फुरमान दतुर्फुगे तेरे देगा मुगे रईसुंगे हाजिर का तफात एक ही दायरा तक गुलुम बदई कुरमुगे फहुन नामा तवगा सोई कुरमुस्वनी हम जेफा अदिमोड़ श्रीलंका बिजनेस फोरम गा रईस बैर वडागतुम वनी हम जेफा मीगेतुर श्रीलंका गा दिरिउले दिवे रईतु नावेस एमेक फान बदल कुरवाने मिदतुर्फुगे सबुन देगामु इस्कंदे एक दायरा तोगे इतुरुन दिवे राज्य श्रीलंका या देमेदो इग्गाय कुलुं इतुर बदई कुरमा गुले गुतु मशवरा कुरवेनिकमा रईस ओफिहु विदाळवे मिदतुर्फुले की देहास फंसविस जुलाई अशावीहु तिरीह श्रीलंका गे रईस अनुर कुमार डिसनेक राज्य कुरवि फुरमान दतुर्फुले फो रईस जमहूरिया कुरवा दतुर्फुले ए दतुर्फुले की देगामु गे देमेदो गा खारजे गुलुं गायम कुरिता फस्तुल सहर फुरुम गे मुनासिबता गुलिगे कुरबि दतुर्फुले दिवे राज्य श्रीलंका या दिमेदु खारजी गुलुं कायम कुरी नवारस्ते का फस्तुलस फस्वन अहरुगे जुलाई महुगे सपिस्वन दोहु दिवे नूसरी ना हुरिहा गोतकुं फाही रक्का तेरी माह होले तनवस कोफा बेवमकी वेरिकमुगे फुरतम दुवहुं फेशिगें हिफाट्टमुं अन्ना एम्मे मती एम मसलहातु कमा रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ बिदाळ वेचे रईस जमहूरिया मिफद विदावी दुनिया के नूसरी कम के मिनी वंकम के दोह को मुनासबत का फणुवी हास हितोबेगा मेवरो के तुल तफसील एक बदल कुरानी अहमद इचलान
2: रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ विदावी मीडिया की कानून असासी का शरीह को बयान को फवा वकी फवा भारत गुड़वा दिनमुगे एम ए मुहिम दारू अदा कुरा हतरवन बारो कमा रईतम बारवीर कुरुमा मौलूमत होता जिम्मा दार कुरुनिवी हामकंबुड डेमोक्रेटिक वेट्टे कशवर कुरुमगे एम ए बोड दौरंग दाकुरनी जिम्मा दार नोस्वरी खमा विदाल्वी एगतों हियाल फाल कुरुमग मिनिमंगम की मैवगेंवा इस्लाम दीनुगा नुहनु मती दरजयक फुरसत दैफवा कमे कमशा इस्लाम दीनुगा हियाल फाल कुरुमग हिफाहटन जे इंतकका मिंतके वनी खंडाळु वाफकमा विदाल्वी मिगतों हियाल फाल कुरुमग अहलागे मिंगंतक तबावमा मुजतमोगे आम मसलहत हिफेहटमा सिलमा सलामत नेगहटमा इंसानी अबुरा खरामा रक्कातर कुरुमंग इस्लाम दीनुगा वनी बार अळु वाफकमा रईस विदाल्वी रईस विदाळवी मि जमानुगा खुरिहा बावतिक मिनिवंकम बिनाय फोननी नूसरिकमग मिनिवंकम के मच्चकम इंसानी हग्गुतका देमहटेन वतरगिया अदे सुलह मसलस्कन दमियतों गुलिफवानी विस नूसरिकमग मिनिवंकम कमशा दुनियागे नूसरिकमग मिनिवंकमग मिदुहु नूसरिंग हग्गुत रक्कातरिको हगीगता आयगत लिया अदे तेदुबुना मिहुग रक्कातरि वेट्टे बिनाक्रमुगे अजुम कंडळन जेहकम विदाळवी दिवे नोस्वरी नंग हुरिहा गुतको फही रक्कात्रि माहौल तनवस्कोफा बेवमकी मी सरकारुगे फुरतम दुहुम फेशंग हिफाहटमुंगन्ना एमएमआती एम मसलाह कमशा दिवे